0: As you say, sunshine.
1: Sunshine? कहाँ से ढूंढकर लाते हो तुम ये सब प्राचीन words?
0: जहाँ से मैं आया हूँ.
1: Oh, तो आप यहाँ क्या लेने आए हैं?
0: प्यार.
1: Just a tip. हमारी दुनिया में प्यार प्यार नहीं होता, तो शायद आपको खाली हाथ जाना पड़े, क्यों ना?